ब्रह्मस्तशिवस्तहरिश्चेन्द्रस्तोऽक्षर परमस्तरात् रतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्ण